0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा।

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलिना पा छिगु जीवन या पला पला नेपकीमा किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन या त शीतलता दिम, जीवन या त जीवित यै म, अलिना प छिगु जीवन या पला पला न्हि फुकि म। किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा। किप्स 98.3 एफएम।

0: Life-changing quotes. जब तिमी एक मिनट रिसाउँछौ तब खुशीका 60 सेकेन्ड तिमी गुमाउँछौ।
1: Enjoy the cover version of your favorite songs. Covermania at 98.3. Covermania at 98.3.
2: Every Monday 5 p.m. and Friday 8 p.m.
3: पुरै एक घंटा तीनोटा मूवीज का सुपरहिट गीतहरू।
4: 3-in-1.
5: Every Saturday 9 a.m. and Thursday 6 p.m.
6: What's the secret to success?
7: Simple. Say yes to radio advertising.
6: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
7: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
6: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
8: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
9: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
10: यू कैन डांस,
11: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
12: जस्ट ट्यून इन
11: KIPS FM 98.3 megahertz, your companion, the radio of new generation.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: Indian Country FM.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
2: दिल दीवाना, बिन सजना के।
1: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो कीप्स एफएम मा।
3: एक फूल झरे रखेबो, एक फूल झरे रखेबो।
4: नेपाली सुपरहिट्स।

0: Every Tuesday and Friday, 1 p.m. Wednesday, 10 p.m.
1: Timile bhane ka sara dev soera ma
2: Nepali Super Hits
0: Only on Kips FM 98.3
3: Raja Matiwa Matina Ewa Nepushi Changutu Kheli
4: नेपाल भाषाया न्याही पुसिचौं मेता
5: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
6: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
7: चलने लगी है हवाएं सागर भी
6: Classic Hindi Pop Time at Kips FM 98.3.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Kips FM 98.3 MHz मा
1: फूल को डाले डाले मा तिम्रो रूप को लाले
2: नेपाल चलचित्र का सदाबहार गीतहरु
3: मेरो
2: Wednesday and Saturday, 2 p.m., Thursday, 10 p.m., only on Kips FM 98.3.
4: Kips FM 98.3 MHz, your companion.
5: Chemical X.
6: On Kips 98.3.
7: Fox. At 98.2.
5: Chemical X.
6: Enjoy.
5: X.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: Don't change the station. We'll be right back. You are listening to Kips FM 98.3 MHz, your companion. Just tune in.
1: Sunao lo yaad, sunao lo geet. Bollywood Golden Hits. Kips FM 98.3 MHz ma. आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे. पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो कीप्स एफएम मा.
2: नेपाली पॉप, फ्लैशबैक. Every Sunday and Tuesday 10 p.m., Thursday 9 a.m., and Saturday 5 p.m.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: विश्व जगत मा साताभरि घटेको प्रमुख खबर सँग अपडेटेड रहनको लागि सुन्नुहोस् वीकली रोल न्यूज मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा ट्यून इन गर्नुहोस् हरेक आइतबार बिहान 7 बजे अनि हरेक सोमबार बेलुकी 8 बजे
2: कुन मेरा क्या तुला दे
3: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
4: तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब दिखता है यारा मैं क्या करूं
3: Every Sunday 9 p.m. and Tuesday 6 p.m.

0: Kids 98.3 FM, your companion.
1: The weekly countdown show of top 10 English numbers with exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits, and many more. Do tune into Weekly 10.
2: Time Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
1: on KIPS 98.3 FM.
3: What's the secret to success?
4: Simple. Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो
6: अब धन नाना मान्नुस् ननस्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि
7: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
8: यू कैन डांस
9: यू कैन सिंग ऑल यू गॉट टू डू इज
10: जस्ट ट्यून इन
2: KIPS FM 98.3 MHz, your companion.
11: The radio of new generation.
12: Amilai Sunnuhos, www.kipsfm.com Marfat. Just tune in, radio, naya generation ko.

0: Peeps FM 98.3 MHz. Your companion.
1: The world's full of tremendous numbers of trends and your busy schedule. Are you missing out trending English hits? If yes, the radio of new generation presents What's Trending. Just to keep you updated about trending English hits and its information. Every Saturday, 7 a.m. and Thursday, 9 p.m. Only on Kips FM 98.3 MHz. Never miss out being trendy.
2: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
4: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: listen to your favorite classic English songs only on English Retro Numbers. English Retro Numbers every Monday 9 p.m. and Wednesday 9 a.m. Station Gibbs FM 98.3 MHz.
1: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
1: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स एवरी संडे 9 p.m. ट्यूसडे 6 p.m.
1: पहला नशा पहला खुमार
2: स्टेशन Gibbs FM 98.3 MHz.
1: नया प्यार है नया इंतजार.
3: This is Gibbs 98.3 FM, your companion.
4: Bing bing bing dum.
5: Mix Max at 98.

0: हिट्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
0: एवरी फ्राइडे 12 पीएम।

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: हरेक शनिबार मध्याह्न 12 बजे, आइतबार राति 8 बजे र मंगलबार बिहान 9 बजे।
1: Keep 98.3 FM, your companion. On Keeps FM 98.3, this is Weekly 10. Segment Fresh Songs.
2: Song
3: Bad
2: Artist
3: 80s

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: लो याद सुनो लो गीत बॉलीवुड गोल्डन हिट्स कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा
1: दिल दीवाना बिन सजना के
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा
2: कार्यक्रम कॉलीवुड टाइम
3: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: फेरि छ्याप छ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो।
1: अब धन नान मान्नुस्, नन स्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
2: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागी गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
3: यू कैन डांस,
4: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
5: जस्ट ट्यून इन
4: KIPS FM 98.3 MHz, your companion, the radio of new generation.
6: What's the secret to success?
7: Simple. Say yes to radio advertising.
6: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
7: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
6: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
8: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
2: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
5: Stay connected with your favorite station, KIPS FM 98.3 MHz.
7: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
5: And don't stop there, follow us on Instagram and TikTok too. Search KIPS FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
9: History of rock.
10: Monday 3 p.m. Only on KIPS FM 98.3 MHz, your companion.
0: सौन्दर्य, स्वास्थ्य र जीवनशैली सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम ब्युटी हेल्थ एन्ड लाइफस्टाइल KIPS FM 98.3 मेगाहर्जमा शनिबार बेलुकी 7 बजे, मङ्गलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे।
11: KIPS FM 98.3 MHz, your companion.
12: KIPS FM 98.3 MHz presents Best Romantic Hindi Songs.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: वास्ते जावे तो मैं गवाए मावे तो
0: Hits FM 98.3 presents Pop Hour
2: मुझे कैसे पता न चला Every
0: Friday, 12 p.m.

0: Don't change the station. We'll be right back. You are listening to KIPPS FM 98.3 MHz. Your companion. Just tune in.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
2: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स मा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
3: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स